संजीव कुमार और उनकी वेरी डिफरेंट अदा ऑन स्क्रीन. आर डी बर्मन का म्यूजिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. सो ये बेसिकली एक पंजाबी गाना है, सॉरी बंगाली, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, बंगाली. मोने पोरे पोरे रूबी रॉय, ओके. और वहाँ से ये अडेप्ट हुआ है ये गाना, और नंबर 4 पे था ऑन बिना का गीतमाला इन द ईयर 1973. येट आउटलिव्ड ऑल हायर रैंकिंग सॉन्ग्स फ्रॉम दैट ईयर इन पब्लिक मेमोरी. आज भी हमें सुनने में कितना अच्छा लगता है ना ये गाना. मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, और इट्स लाइक फेमसली विशिंग अ कर्स अपॉन इमोशनल यर्निंग अबाउट अनफेथफुल लवर. जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे. कहीं ना कहीं आपको भी फील होता होगा ना, कोई अगर आपको धोखा दे के गया तो यार तू भी जले, तू भी मर, तू भी तड़प. पता चलेगा जब तेरे जैसा तुझे कोई मिलेगा, और वो होता ही है, कर्मा इज ऑलवेज देयर. ऑलराइट, दिस इज लेजी लवे विद निलोफर ऑन ईस्ट एफएम, कैन यस प्रीमियर एशियन मिक्स. हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्लासिक सुनेंगे. कीप इट ईस्ट एफएम.

beautiful does Juhi Chawla look in this film Dar, and wonderful combination with Sunny Deol, Shahrukh Khan of course in the film with his fantastic performance. Mujhe Shahrukh Khan ki career ki ye baat badi achhi lagi, jab bhi koi hero ne challenge lene se mana kiya, he went and took the challenge ki bhai main to kuch alag hi karunga, bhale phir dekha jayega aage kya hai. Kehte na dar ke aage jeete, waise film ka naam bhi Dar hi hai. Ek hamare Mumbai mein badi fun si line hai ki dar ke aage जीत है, दादर के आगे सीट है. यानी कि जो हमारी विरार लोकल होती है मुंबई में ट्रेन, वो इतनी भरी होती है. अभी सिचुएशन क्या है, आई थिंक इट्स वर्स्ट, बट आई रिमेम्बर गोइंग टू कॉलेज एंड ट्रेन लेना मतलब मुसीबत है. तो ये उम्मीद रहती थी कि भाई अंधेरी से बैठे हैं, शायद दादर के आगे सीट मिल जाएगी. वरना तो खड़े खड़े ही पहुँच जाए चर्च गेट. और डर फिल्म की बात करें तो व्हाट अ फैंटास्टिक, लाइक शाहरुख खान कैरेक्टर प्लेइंग द नेगेटिव रोल, he's gone ahead and always done something out of the box, and that's why he's called the King Khan of Bollywood, doing something different, something outside his comfort zone. कंफर्ट जोन में रह के तो हर कोई काम कर लेता है, वो तो आसान ही, भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, यही मेरी याद है. बट जब आप उसके बाहर जाके कुछ नया करते हैं, कुछ अलग सा करते हैं, कुछ सीखते हैं, देन ओनली यू गेट सक्सेसफुल. दैट इज अ रियलिटी. ऑलराइट, चलो अभी मेरे पास एक बड़ा मस्त सा गाना है, ठीक है, आपके भाई और मेरी जान का, यानी कि सलमान का गाना है ये. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून्स और बहुत ही स्वीट सा रोमांटिक नंबर है, ठीक है. तो मैं बीच के लिरिक्स उठा रही हूँ. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, यू शुड बी नोइंग दिस सॉन्ग ऑफ हेड, कि दिल के चमन का हंसना तो देखो, जागी नजर का सपना तो देखो, ऐसे हुए हम एक जान एक दिल, तू ही है कि मैं हूं कहना है मुश्किल, झोंका बसंती है तू, तन है गुलाबी मेरा, दो रंग मिलने के बाद होते नहीं जुदा. ठीक है, आपने सुना, मैं एक बार रिपीट करूं, दिल का चमन का हंसना तो देखो, जागी नजर का सपना तो देखो, ऐसे हुए हम एक जान एक दिल, तू है कि मैं हूं कहना है मुश्किल, झोंका बसंती है तू, तन है गुलाबी मेरा, दो रंग मिलने के बाद होते नहीं जुदा. आप मुझे बताओ कौन सा गाना है, कॉल मी और मैसेज मी. वैसे अगला गाना भी सलमान का ही है. ओ

बिल्कुल सा, आपके साथ मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आज मैं ऊपर एकदम यू नो आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन योर कंपनी ऑन ईस्ट एफएम लेजी लम्हे पे आप निलुफर के साथ. और सोनल कह रही है मैं टेंपल जा रही हूँ और तुम्हारे लिए ज़रूर प्रे करूँगी. यू नो व्हाट, बाकी सब ठीक है. जब आपको कोई अपनी दुआओं में याद करे ना, अपनी प्रेयर्स में याद करे, वो सबसे सबसे सबसे अजीज है, बहुत ही बड़ी बात है. कह रहे हैं कि आप दूसरे टेंपल जा रहे हैं, गोम्बेश्वर, देयर इज पूजा टुडे, श्रावण मास चल रहा है. सो इन्जॉय योर ट्रिप टू द टेंपल, इन्जॉय योर प्रेयर्स सोनल, और थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कंपनी. बहुत सारे सही जवाब आए हैं और कुछ गलत भी. गोना गिव यू लिटिल मोर टाइम, यू टेल मी विच सॉन्ग इज दिस. ओके, दिल के चमन का हंसना तो देखो, जागी नजर का सपना तो देखो, ऐसे हुए हम एक जान एक दिल, तू है कि मैं हूँ कहना है मुश्किल, झोंका बसंती है तू, तन है गुलाबी मेरा, दो रंग मिलने के बाद होते नहीं जुदा. तो आप बताओ कौन सा गाना है. कॉल मी 0711 046 106, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ऑन 0701 106 106.

Abhijit and Alka Yagnik, what a fantastic song that is, taken off from the movie Dhadkan. 48 minutes past 11, getting in quite a few right answers. Well done to each one of you. Aur maine pucha tha aapse kaun sa gana. I'm going to give you a little more time. Ke dil ke chaman ka hasna to dekho, jaagi nazar ka sapna to dekho. Aise hue hum ek jaan ek dil. Tu hai ke main hu, kehna hai mushkil. Jhonka basanti hai tu, tan hai gulabi mera. Do rang milne ke baad hote नहीं जुदा. तो अगर आपको पता है कौन सा गाना है ये, जैसे मैंने आपको क्लू दिया था कि सलमान खान का गाना है, सो टेल मी विच सॉन्ग इट इज, गिव मी अ कॉल 0711 046 106. से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 0701 106 106. बहुत अच्छा सा शेर मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ने भेजा है कि जिंदगी छोटी सी है, इसे प्यार से जिया करो, खुद से भी और अपनों से भी मोहब्बत किया करो. कल किसने देखा है ये पल तो अपना है, जो दिल के करीब हो उसे दिल के करीब ही रखा करो.

0: East FM, Kenya's premier Asian mix. Alauddin Qureshi, back on the airwaves of East FM with Anjuman.
1: Tu meri khamoshi hai.
2: Miss Worldwide.
3: East FM, Kenya ki mukaddam Asiai sangeet tarang. आप जैसे खुशबू जैसे सुनने वालों का चहीता रेडियाई इदारा दिन के 12:10 हुए हैं। हाजिर है ईस्ट एफएम की हर दिल अजीज शायराना दिलबराना आशिकाना अंजुमन खिदमत गुजारी में आपकी मुसर्रतों के सौदागर अलाउद्दीन कुरैशी। कबूल फरमाइए हमारा प्यार दुआ और मुअद्दबाना सलाम। पहला हिस्सा एक सौगात शायराना और आज ये सौगात बन के आई है आपके लिए कव्वाली। बेशक सुपर हिट कव्वालीस। तो सबसे पहले आप सुनेंगे चढ़ता सूरज धीरे धीरे। सिंगर हैं जाहिद नाज़ां।

चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आप सुन रहे थे ये कव्वाली जाहिद नाजां से। अब अगली कव्वाली है मस्ती माटी के पुतले, तकी दिलदार की आवाज में। नजर नवाज नजारों में जी नहीं लगता, वो क्या गए के बहारों में जी नहीं लगता। न पूछ मुझसे तेरे गम में क्या गुजरती है, न पूछ मुझसे तेरे गम में क्या गुजरती है। यही कहूंगा हजारों में जी नहीं लगता।

यदि तुझसे जफा करे, तेरी दौल को तेरे माल को पाने के लिए, कहां दिन ये तेरे मरने की

ना अब वो आंखों में बरहमी है, ना अब वो माथे पे बल रहा है। वो हमसे खुश हैं, हम उनसे खुश हैं, जमाना करवट बदल रहा है। खुशी न गम की, न गम खुशी का, अजीब आलम है जिंदगी का। चिराग अफसरदा है मोहब्बत, न बुझ रहा है न जल रहा है। आपने जाहिद नाजा को सुना, तकी दिलदार को सुना, अब छोटे यूसुफ आजाद देख तमाशा लकड़ी का।

आंख उनको देखती है नजारा किए बगैर, आंख उनको देखती है नजारा किए बगैर, पर्दे में छिप गए हैं वो पर्दा किए बगैर। हमको भी देखना है कि ये मुनकरीन इश्क, हमको भी देखना है कि ये मुनकरीन इश्क कब तलक रहेंगे तेरी तमन्ना किए बगैर। और अब सुनिए, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, प्रहलाद शिंदे की आवाज में, उड़ जाएगा एक दिन पंछी।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: Kenya's premier Asian mix,
2: East FM,
1: celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
2: East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix.